अटकत लुगड़े कुछ चोरी अगर तीतरे कुठ मिलते आओ फटकत लुगड़े कुछ चोरी मग शिवन घे की तुमसे।

0: तो सुन ली उसकी धड़कन मैंने और समझ गई सब बात।
1: फिर बोलना, अरे बोलना क्या हुआ
0: फिर।

0: पूछो नानी।
1: मैं अकेला रह गया चाचा जी, दीदी चली गई अपने घर, मैं अकेला रह गया।
0: अकेला? मैं चुप तेरा बेटा, तूने एक सन्यासी को संसारी बना दिया, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा।
1: चाचा जी।
0: बेटा, तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तेरे हाथों से देश के बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं।